0: तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड
1: मैले मेरो मुट्टु गुट्टु र हजुरलाई सुम्पिएको छु मेरी छोरी दुखेडपा
2: एफएक्स सिनेमाज घोराई दस चौडी कुला दाङमा भव्य प्रदर्शन भइरहेका छन् नेपाली कथानक चलचित्र गौथली हली कमला मिस
3: तेरो हमें साथी के बाकी कियो
4: केरे बौलाई सिक्याउ सलाई पढाउन लागि गरे ल्याऊ पचक

0: वायरनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायरनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रेसिंग टाइम। यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5784954 डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ।

1 get 1 free offer ma. 3 महीना को 125 Mbps internet. जो 2700 में खरीद करता. Free internet package. नया चरण को लागी gift करने मौका. सफल referral ma. आप लागी 1 महीना free internet. Vianet. अब सब connected.

0: बायनेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायनेट अब सब कनेक्टेड।
1: हाड जोड्नी क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सूचना।
2: हाड जोड्नी नक्सा तथा मेरुदण्ड रोग विशेषज्ञ तथा छाला मासु एवं हड्डी क्यान्सर सर्जन डाक्टर गोपाल पौडेल एमबीबीएस एनजीएमसी कोहलपुर एमएस बीएस एमएमयू ढाका
1: डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू।
2: छाला तथा मांसपेशी सम्बन्धी क्यान्सर भएको,
1: हाड जोड्नी सम्बन्धी क्यान्सर भएको,
2: हात खुट्टा भाँचिएको प्लास्टर गर्नुपर्ने,
1: शरीर झमझमाउने, दुख्ने, सुन्निने, गाँठागुटी सिल्किने,
2: बाथ युरिक एसिड हड्डी खिएको,
1: ढाड कम्मर घुँडा तथा जोड्नी दुख्ने,
2: खेलाडीहरूको चोट तथा जोड्नी सम्बन्धी समस्या।
1: नोट, फोनबाट पनि नाम दर्ता गराउन सकिनेछ।
3: सम्पर्क दिव्य फार्मेसी घोराई 15 सडक विभाग रोड दाङ, फोन नम्बर 0825940010, मोबाइल नम्बर 98478289013 र 98095012871।

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट चोकोनट विटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।